उम्मीद करता हूँ ये संगीत आपको बहुत पसंद आया होगा, और इस संगीत ने भाई मुझे तो मेरे दोस्तों की, मेरे यारों की याद दिलवा दी। उम्मीद करता हूँ आपको भी अपने कुछ दोस्त याद आए होंगे। ज़्यादातर ये संगीत जो स्कूल की ग्रेजुएशंस या कॉलेज की ग्रेजुएशंस होती थी उस पर बहुत मशहूर हुआ। उसके बाद इनको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिली के को इस गाने के बाद, और काफ़ी उन लोग उनको जाने लग गए। फिर उनके बाद उनको अपने करियर का एक ब्रेक थ्रू सॉन्ग मिला जिसका नाम था तड़प तड़प के, जो कि मूवी हम दिल दे चुके सनम में था। आज भी ये संगीत काफ़ी जो इंडियन आइडल जैसे शो हैं म्यूज़िकल उस पे गाया जाता है और के को याद किया जाता है। और इस संगीत के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग मेल में नॉमिनेशन मिला।

नंदिनी नंदिनी नंदिनी सभी चाह रहा है, पापा नहीं माने, वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। इतनी इजाजत दी है कि तुम उसे जाते वक्त सिर्फ एक नजर देख सको। उठो नंदिनी उठो, समीर हमेशा के लिए जा रहा है, जाकर देखा उसे, फिर शायद जिंदगी में तुम उसे कभी नहीं देख पाओगी। जाओ नंदिनी।

बहुत ही फेमस हुआ था ये सॉन्ग, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। ये तो एक सैड सॉन्ग था, बट के ज़्यादातर अपने रोमांटिक गानों के लिए जाने गए। इस संगीत के बाद 2000s में के बहुत ही लोकप्रिय हुए और इन्होंने वेरियस लैंग्वेजेस में अपने गाने गाए। इनके काफी मशहूर गाने हैं जैसे कि कोई कहे कहता रहे फ्रॉम दिल चाहता है, ओ हमदम सोनियो रे फ्रॉम साथिया, डोला रे डोला फ्रॉम देवदास, क्या मुझे प्यार है वो लम्हे, तू ही मेरी शब है फ्रॉम गैंगस्टर, आंखों में तेरी फ्रॉम ओम शांति ओम, खुदा जाने फ्रॉम बचना ए हसीनो, जरा सा फ्रॉम जन्नत, सजदे फ्रॉम खट्टा मीठा, पिया आए ना फ्रॉम आशिकी टू, मत आजमारे फ्रॉम मर्डर थ्री, इंडिया वाले फ्रॉम हैप्पी न्यू ईयर, तू जो मिला फ्रॉम बजरंगी भाईजान। ये सभी संगीत इतने पॉपुलर हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने इन सभी गानों को कभी ना कभी एक ना एक बार तो जरूर सुना होगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक और संगीत सुनते हैं, तू ही मेरी शब है।

0: बहुत ही बेहतरीन संगीत। और धीरे धीरे मैं ये देख रहा हूँ कि अगेन हमेशा की तरह समय निकलता जा रहा है। हमने आरजे कार्तिक की कहानी तो सुनाई ही नहीं, तो चलिए अब सुनते हैं आरजे कार्तिक की ये एक मोटिवेशनल कहानी।
1: वो कहते हैं ना, अगर खुशी किसी दुकान में मिलती तो इस दुनिया में कोई इंसान दुखी नहीं होता। लेकिन खुशी आपके अंदर है, ढूंढने से आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए आपसे आरजे कार्तिक कहता है कि खुशी को महसूस कीजिए। एक बड़ी कमाल की कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार एक सेठ जी की दुकान पर एक आदमी नौकरी किया करता था। बड़ी मेहनत से काम करता था, लगन से काम करता था। सेठ जी बड़े खुश थे, वो आदमी बड़ा खुश था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन उस आदमी ने सेठ जी को बिना बताए छुट्टी कर ली, वो गायब हो गया। सेठ जी ने सोचा कि चक्कर क्या है, बताया क्यों नहीं, क्या वजह हो सकती है। सेठ जी ने खुद से सोचा कि शायद हो सकता है पैसों की कमी होगी, लड़का बड़ी मेहनत से काम करता है, तो तनख्वाह बढ़ाने का सोच लिया। अगले दिन जब वो आदमी जब दुकान पर आया तो सेठ जी ने कहा कि देखो भैया, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी है। अगले महीने की पहली तारीख को उस व्यक्ति को बढ़ा हुआ पैसा मिला, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। सेठ जी को धन्यवाद नहीं कहा, ना खुश हुआ, अपना काम करता रहा। सेठ जी ने सोचा कि पैसा बढ़ा दिया, अब मेहनत लगन से काम करेगा, बात आई गई होगी। कुछ महीनों के बाद में एक बार फिर से वो आदमी छुट्टी पर चला गया, आया नहीं। सेठ जी को बड़ा गुस्सा आया कि अजीब आदमी है, एक तो मैंने पैसा बढ़ाया, ना उसका धन्यवाद दिया, ना मुझे आकर के कुछ बताया, ना अपनी जिम्मेदारी समझी, आज फिर से छुट्टी कर गया। सेठ जी बड़े गुस्से में थे। अगले दिन जब वो आदमी काम करने के लिए आया तो उसे बुला करके कह दिया कि भैया, तुम्हारा पैसा घटा दिया है, जो सैलरी तुम्हें पहले मिला करती थी वही तुम्हें मिलेगी। अगले महीने की पहली तारीख आई और सेठ जी ने घटी हुई तनख्वाह उसको दी। इस बार भी लड़के ने, उस आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ना वो खुश हुआ, ना दुखी हुआ। सेठ जी ने उसको बुलाया और पूछा कि एक बात बताओ, जब तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई, जब तुम्हारे पैसे बढ़ाए तब तुम खुश नहीं हुए, अब जब घटा दिए तब भी तुम दुखी नहीं हो रहे, चक्कर क्या है। उस आदमी ने जो कहा ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा कि सेठ जी, जब पहली बार नहीं आया था ना, उस दिन मेरे घर में मेरा बच्चा पैदा हुआ था और आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, तो मुझे लगा कि ऊपर वाले ने मेरे बच्चे का हिस्सा मुझे दिया है, तो मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। दूसरी बार जब नहीं आया था तब मेरी मां का देहांत हो गया था और तब मुझे लगा कि आपने जो तनख्वाह घटा दी है, तो मुझे लगा कि मेरी मां अपने हिस्से का अपने साथ ले गई, तो मैं उस घटे हुए पैसे के लिए परेशान क्यों हूं। यह बात सुनने के बाद सेठ जी ने उस आदमी को गले लगा लिया। यह छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते हैं, कई बार बहुत अच्छा वक्त आता है, कई बार बहुत बुरा।

0: वक्त आता है। उस आदमी को देखिए, वो जब पैसा बढ़ा तो उछला नहीं, ना ज्यादा खुश हुआ, जब बुरा वक्त भी आया तो ज्यादा दुखी नहीं हुआ। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, सिकंदर वही होता है जो हर वक्त को पार करके आगे बढ़ जाए। इसीलिए आरजे कार्तिक आपसे कहता है, जिंदगी के दबाव में आना बंद कीजिए, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: उम्मीद करता हूं कि इस कहानी से आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है भाई। तो चलिए बात करते हैं केके की आगे। केके की इलनेस और डेथ कैसे हुई। केके 31 मई 2022 को परफॉर्म कर रहे थे कॉन्सर्ट पे, वो एक कॉलेज फेस्टिवल था जिसका नाम था नजरुल मंचा इन साउथ कोलकाता। और कॉन्सर्ट के बाद जब वो अपने होटल में गए एस्प्लेनाड में, वहाँ पे उन्होंने ठीक महसूस नहीं किया और वहाँ पे होटल में ही उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। वो ज़मीन पे गिर गए और उनको रिवाइव करने की बहुत कोशिश की गई। होटल से उनको हॉस्पिटल में लेके जाया गया, जहाँ पे उन्हें मृतक घोषित कर दिया गया। तो वो सिर्फ 53 ईयर ओल्ड के थे, तो बहुत ही यंग एज में हमने एक अपना बहुत बढ़िया कलाकार खो दिया। तो चलिए आगे उनका संगीत एक आखिरी सुनते हैं और करते हैं अलविदा। और अगली बार मिलेंगे आप सभी को, फिर से एक बार एक शो लेके आएंगे आपके लिए और उम्मीद करेंगे आपको वो हमेशा की तरह बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त मैक्स चोपड़ा और आप इंजॉय कीजिए ये आखिरी संगीत आज का।

सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस शो परिचय में आना चाहते हैं तो मुझे 021-626-542 पर पहुंच सकते हैं। आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। आप परिचय को हर थर्सडे 5:30 PM से सुन सकते हैं और इस पॉडकास्ट को

0: दोबारा सुनने के लिए NPR के वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो है www.npr.nz/show/parichay.
1: Be empowered and be heard with an Access Radio program. Find out more at npr.nz.